0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
1: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो। बहुत अच्छी कहानी थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की। कोई नाराजगी है तो माफ करें।
1: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। हाँ। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
1: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
2: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
1: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?

0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्यपुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्यपुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: अठारह भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
2: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
4: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहब जादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
5: सुना तुमने?
6: क्या?
5: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
6: हैं?
5: अब हमारे

0: कुंवर सिंह क्या करेंगे?
1: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
0: ठीक कहते हो भाई, अभी देखा नहीं जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था, अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
1: हाँ मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
2: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
3: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो अब हमार कुंवर सिंह का करीन?
4: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
5: चाहिए कि जिसके बारे में
0: हुजूर अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
6: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
1: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
6: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
0: जी हुजूर,
6: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
0: जी हुजूर।
6: तो ठीक है आरा चलने की तैयारी करो।
7: छब्बीस जुलाई 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी, चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
6: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं, इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे, आगे बढ़िए। सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है, शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
8: कुंवर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
7: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा, सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
9: साथियों

0: आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की जय।
1: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
2: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
0: कुंवर सिंह
3: जिंदाबाद,
0: कुंवर सिंह
3: जिंदाबाद,
0: भारत माता की
3: जय,
0: भारत माता की
3: जय।
2: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
4: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
5: आमीन। खुदा आपकी मुराद पूरी करे।
4: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
6: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओ, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: स्पोर्ट्स कल्चर बनता है।
1: दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे।
2: The FIH Hockey Men's and Women's World Cup 2026 will feature a revamped competition structure with the traditional quarterfinal stage scrapped and the top two teams from each of the two crossover pools advancing directly to the semi-finals. Belgium and the Netherlands will jointly host the tournament from the 15th to 30th of this month. India's men have been drawn alongside England, Pakistan and Wales in Pool G, while the Indian women will face China, England and South Africa in their Pool D campaign. And with that, we end this news bulletin.
3: நேரம் 6:10. ஆகாஷவாணி உதகமண்டலம் வானொலி நிலையம் மற்றும் ஊட்டி எஃப்எம் 101.8. விளக்கேற்றும் வேலை, திரையில் ஒலித்த பக்தி பாடல்கள்.

0: सभापति जी।
1: क्वेश्चन नंबर 226 डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
2: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है, और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
3: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ आवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।

0: टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। माननीय डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। माननीय ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको लागू किया है तो वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है। स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक विषय है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सतरम सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विषय

0: के पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब के जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब के डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब में विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्युटी पाई गई, उस एम्बिग्युटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनके फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
1: श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी, श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी,
2: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन अवर ओन डिस्ट्रिक्ट। सर, द प्रोजेक्ट एनविसेजेस an investment of approximately 1.85 lakh crore including 20 gigawatt of renewable energy capacity and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. Sir, my question here is, I want to ask the Honorable Minister if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion, sir.
0: Honorable Minister. Sabhapati Mahoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो उन्होंने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम आरओडब्ल्यू का जो फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रमुखों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे रहे
1: हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे

0: बनाने की कोई योजना है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर।
2: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है। और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशिएंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर ताज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका जवाब दे दो।
3: हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी वादी वृंदा केटकलाम।